0: सबै राम्रो सधैँ हाम्रो रेडियो संखुवा सभा 95.5 मेगाहर्ज सधैँ सुन्नु होला।
1: यस कान्तिपुर डायरीका साथमा
2: हुलास ग्याल्भलम तीन गुणा बढी टिक्छ, हुलास भई अरू किन खोज्ने।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

0: साह्रै मिठो कुरो सम्झायो हो साइला।
1: अब अहिले थरी थरीका चिसो थरी थरीका कोला खोइ बता गयो धारा बता गयो कोला।
0: त्यो बोतलको पानी न त पुरा कहाँ भिज्ने न त पुरा तिर्खै